Mirchi. It's hot.

0: ऑफिस में सबके सामने आपका कॉलीग आपके भाई जैसा है, लेकिन घर होते हो जब आप अकेले तो यू हैव डर्टी लिटिल ड्रीम्स अबाउट योर कॉलीग. अगर आपकी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है विच यू जस्ट कांट शेयर विद एनीवन एल्स बिकॉज और किसी को बताओगे तो वो आपको जज करेगा, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि मैं हूँ आपकी ब्रोशी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. जल्दी से अपना नंबर भेजो इंस्टा पर या FB पर, मैं पक्का आपको फ़ोन करूँगी और आपकी जो सीक्रेट है ना किसी को नहीं बताऊँगी, सिर्फ आपको रोशिफाई करूँगी एंड बात खत्म. अभी के लिए मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
1: हाय रोशी.
0: आपका कन्फेशन मुझे तो पता है बिकॉज़ वी हैव डिस्कस्ड इट ऑन इंस्टा, बट मुझे एक बार फिर से बता दो ताकि सबको पता चल जाए कि इस दुनिया में कितनी सारी वीक चीजें हो सकती हैं.
1: तो ये ना मतलब इट हैपेंड सम इयर्स बैक. माय बेस्ट फ्रेंड, लाइक माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, तो मेरा बर्थडे था तो वो भी आई हुई थी एंड ऑब्वियसली मेरा कजिन भी आया हुआ था. तो आई वाज वेरी क्लोज टू हिम बिकॉज़ सीक्रेटली ना वो मेरे को थोड़ा पसंद था.
0: ओके.
1: तो पर
0: थोड़ा पसंद था मतलब
1: बहुत ही पसंद था, लाइक यू नो उसके सपने देखते रहो और इमेजिन करते रहो अगर ये भाई नहीं होता तो शायद कुछ हो जाता.
0: आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी. करेक्ट. कैरी ऑन कैरी ऑन.
1: तो फिर हम बर्थडे पे थे एंड तो मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी कजिन के बीच में काफी बातें होने लगी एंड आई थिंक दे रियली कनेक्टेड. अगले दिन मेरा कजिन उसके बारे में पूछ रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी पूछ रही है आई थिंक रियली कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है ये वो, डिड ही टॉक अबाउट मी. सो आई हैड टू लाई बिकॉज दिस जेलसी इन मी वाज लाइक नो नो नो आई कांट सी देम टुगेदर, क्या पता मैं हो सकती हूँ ना. आई टोल्ड माई बेस्ट फ्रेंड कि नहीं यार उसने तो नहीं पूछा, वो तो ऐसे ही लड़कियों से बातें करते रहता है, उसका नेचर ही ऐसा है तो पूछ जाओ उसके बारे में. एंड शी यूज़ टू बी हर्ट अबाउट दैट बिकॉज इट वाज लाइक द फर्स्ट गाय शी वुड बी थिंकिंग ऑफ डेटिंग और समथिंग एंड ऑल. तो या
0: बुरा नहीं लगा आपको?
1: अब लगा ना. तो अब हुआ क्या कि लड़के ने भी पूछा, सो आई टोल्ड हिम कि नो वो ऐसे लड़कों को भाव नहीं देती, सो डोंट गेट योर होप्स हाई. सो दे अभी नाउ रिसेंटली सो दिस हैपेंड लाइक अ ईयर बैक अगेन, इट वाज माय बर्थडे सो दे मेट अगेन एंड देन दे काइंड ऑफ लाइक दिस होल थिंग गॉट अनरैवल्ड अबाउट बिकॉज बोथ ऑफ देम वर रियली एंग्री विद ईच अदर, टर्न्ड इनटू दिस यू नो कन्फेशन सीन इन माय पार्टी. And because it was my birthday, तो किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे, पर फिर अगले दिन तो अब मेरे से कोई बात नहीं होता. मेरे से पूछा तुमने झूठ क्यों बोला, मैं उसको कैसे बताऊँ कि मैंने क्यों झूठ बोला.
0: बेब यू नो इस सारे चक्कर में इफ देयर इज वन थिंग दैट कैन हेल्प यू ओनली वन थिंग वो सिर्फ रोशिफिकेशन है, बिकॉज अदरवाइज आई डोंट सी एनी होप फॉर यू हियर माई लव.
2: यू've been roshified.
0: If I was to put myself in your shoes, then प्यार तो अंधा होता है पुष्पा. आपसे बात करके बहुत मजे आए मिस्ट्री कॉलर, और अगर आपकी भी जिंदगी में मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह आपके दिमाग के 5-6 पेज मिसिंग है, then I think you're the perfect रोशियन. Hit me up on Insta या FB and we will get talking. नाम 6 मिर्ची रोशी, काम 6 आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: पार्टी ओवर गो रेडियो मिर्ची रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

मैंने अपने भाई के बारे में एक बहुत क्रीपी चीज नोटिस की है, दैट बेसिकली उसकी सारी की सारी गर्लफ्रेंड्स मेरी तरह दिखती हैं और मैं अपनी मम्मी की तरह दिखती हूँ. सो एसेंशियली ऑल हिज गर्लफ्रेंड्स लुक आइदर मम्मी की तरह या मेरी तरह. एंड देन आई फाइंड आउट फाइनली आफ्टर रिसर्चिंग कि ये इसलिए होता है क्योंकि इट्स अ थिंग कॉल्ड सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग, जो सिर्फ आदमियों में होता है, औरतों में नहीं. आदमी अट्रैक्टेड फील करते हैं टूवर्ड्स वीमेन जिनका बोन स्ट्रक्चर बिल्कुल उनकी माओ की तरह होता है. सो माई मम एंड आई हैव लाइक अ रियली शार्प जॉलाइन एंड मोस्ट ऑफ करंट्स गर्लफ्रेंड्स, मोस्ट नहीं एक्चुअली ऑल ऑफ देम हैव इक्वली शार्प जॉलाइंस. अब देखो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो की तरफ, देखो अपनी मम्मी की फोटो की तरफ एंड देन गेट क्रीप्ड आउट अ लिटिल बिट. और जब क्रीप्ड आउट की फीलिंग चली जाए एंड यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट रिलेशनशिप्स, फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची.

0: बचपन से आप बैक बेंचर रहे हो, इट डज नॉट मीन कि जिंदगी भर आपको बैक बेंचर रहना चाहिए। ये आपको सिखाते सिखाते मैं थक गई हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी एडवाइस चाहिए कैसे आप अपनी जिंदगी में जीरो से हीरो बन सकते हो, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE, और मेरे साथ लाइन पर अमित है। हाय अमित।
1: Hello, Rushi.
0: Oh, Le, so cute. You've just changed my name to sound like Russia in Hindi. Hello, Rushi. कैसे हो आप?
1: बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ।
0: झूठ मत बोलो, इतने लंबे चिट्ठे लिख के भेजे आपने मुझे इंस्टाग्राम पर।
1: यार बचपन से मतलब कि मैं पहले पढ़ाई में भी जी रहा।
0: हाँ,
1: मतलब कभी मौका ही नहीं मिला
0: क्या करने का,
1: मतलब गर्लफ्रेंड टाइप, मतलब इन चक्करों में पढ़ने का। तो रिसेंटली मतलब मेरी अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कॉलेज वॉलेज सब खत्म हो गया, उसके बाद जॉब भी मिल गई। अब बढ़िया, तो अब ये है कि अब लाइफ को सेटल करना है। अब मेरे को फाइनली एक लड़की पसंद आई, उसके साथ ना इंस्टा पे घूमी सब कुछ, कभी कभार बात करती है कभी नहीं करती, अब क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
0: तो उसको पता है कि यू लाइक हर?
1: मे बी शी नोज।
0: मे बी क्या होता है यार, जैसे खुल के मेरे को बताया तूने, पता बोला उसको तूने, लाइक खुल के
1: नहीं बोला, मतलब बातों में
0: कोई क्लैरिटी नहीं होती है, डायरेक्टली नहीं बोला है, तो लड़की मुड़ के बोलेगी चल मान ले एक सेकंड के लिए दैट शी गेट्स एंगेज्ड टू समबडी एल्स, एंड उसके बाद आप उसे जाकर कहोगे कि यार तूने तो किसी और से एंगेजमेंट कर ली, मैं तुझसे प्यार करता था, तो अगर वो आपको बोलेगी कि तूने तो कभी बोला नहीं मुझे, ये तो सच है ना, आपने कभी डायरेक्टली तो बोला नहीं, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अब उसे आपसे प्यार है कि नहीं है,
1: अब यही तो जानना है अपन।
0: तो आप जब तक उसे ये नहीं बताओगे दैट यू हैव फीलिंग्स फॉर हर, कैसे जानोगे?
1: मेरे पास तो सारी फीलिंग्स हैं।
0: अरे ये आपको पता है ना, तो फीलिंग्स को सिंगल से डबल करने के लिए सामने वाले को बताना पड़ता है, जैसे आपने मुझे अभी बताया ना कि सब कुछ हो गया लेकिन प्यार करने का टाइम नहीं था, और अब जब बड़ा हो गया हूँ तो आई हैव रियलाइज कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, क्या आपको भी मेरे बारे में सेम फीलिंग्स है? ऐसे करना होता है।
1: पता है क्या यार, क्या? मैं शुरू से ही फट्टू रहा हूँ, मतलब।
0: तो आप जिंदगी भर थोड़ी फट्टू रहना है, बदल सकते हो आप इसको, जस्ट बिकॉज आप आज तक फट्टू थे इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल भी फट्टू रहोगे, समझे?
1: समझ में डर लगता है मेरे को।
0: ऑफ कोर्स डर लगता है, और अभी तो डर लग रहा है, लड़की किसी और के साथ चली गई ना तो फिर बुरा भी लगेगा, और डर से ज्यादा बुरा फील करने में लगता है।
1: चलो अभी ट्राई करूंगा, अभी मिलेगी एक मैरिज में, मिलना उसने मुझे।
0: अरे वाह, तब तो वो भी गुड लुकिंग लग रही होगी, आप भी हैंडसम लग रहे होगे, चुपके से उसे कोने में ले जाना, एक गोल गप्पा खिलाना, और उसके बाद बोलना कि देख यार इधर उधर की बातें बहुत कर ली, अब कुछ असली बातें कर लेते हैं दिल की, मुझे तुझसे प्यार हो गया, छोड़ दो अपना फट्टू बना अब।
1: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच,
0: टेक केयर फॉर सेल्फ यार, ऑल द बेस्ट। अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही इनकी तरह, आपको अभी तक ये पता नहीं है कि डायरेक्टली कैसे अप्रोच करते हैं प्यार में, बिकॉज आप तो फट्टू हो, देन व्हाई डोंट यू डू समथिंग, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE, एंड आई लव यू गाइस सो इनक्रेडिबली मच, सो व्हाइल यू हिट मी अप, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना, सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ऑफिस में सबके सामने आपका कॉलीग आपके भाई जैसा है, लेकिन घर होते हो जब आप अकेले तो यू हैव डर्टी लिटिल ड्रीम्स अबाउट योर कॉलीग. अगर आपकी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है विच यू जस्ट कांट शेयर विद एनीवन एल्स बिकॉज और किसी को बताओगे तो वो आपको जज करेगा, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि मैं हूँ आपकी ब्रोशी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. जल्दी से अपना नंबर भेजो इंस्टा पर या FB पर, मैं पक्का आपको फ़ोन करूँगी और आपकी जो सीक्रेट है ना किसी को नहीं बताऊँगी, सिर्फ आपको रोशिफाई करूँगी एंड बात खत्म. अभी के लिए मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
1: हाय रोशी.
0: आपका कन्फेशन मुझे तो पता है बिकॉज़ वी हैव डिस्कस्ड इट ऑन इंस्टा, बट मुझे एक बार फिर से बता दो ताकि सबको पता चल जाए कि इस दुनिया में कितनी सारी वीक चीजें हो सकती हैं.
1: तो ये ना मतलब इट हैपेंड सम इयर्स बैक. माय बेस्ट फ्रेंड, लाइक माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, तो मेरा बर्थडे था तो वो भी आई हुई थी एंड ऑब्वियसली मेरा कजिन भी आया हुआ था. सो आई वाज वेरी क्लोज टू हिम बिकॉज़ सीक्रेटली ना वो मेरे को थोड़ा पसंद था.
0: ओके.
1: तो पर
0: थोड़ा पसंद था मतलब
1: बहुत ही पसंद था, लाइक यू नो उसके सपने देखते रहो और इमेजिन करते रहो अगर ये भाई नहीं होता तो शायद कुछ हो जाता.
0: आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, करेक्ट, कैरी ऑन कैरी ऑन.
1: तो फिर हम बर्थडे पे थे एंड तो मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी कजिन के बीच में काफी बातें होने लगी एंड आई थिंक दे रियली कनेक्टेड. अगले दिन मेरा कजिन उसके बारे में पूछ रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी पूछ रही है, आई थिंक रियली कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है ये वो, डिड ही टॉक अबाउट मी. सो आई हैड टू लाई बिकॉज दिस जेलसी इन मी वाज लाइक नो नो नो आई कांट सी देम टुगेदर, क्या पता मैं हो सकती हूँ ना. आई टोल्ड माई बेस्ट फ्रेंड कि नहीं यार उसने तो नहीं पूछा, वो तो ऐसे ही लड़कियों से बातें करते रहता है, उसका नेचर ही ऐसा है, तो पूछ जाओ उसके बारे में. एंड शी वाज टू बी हर्ट अबाउट दैट बिकॉज इट वाज लाइक द फर्स्ट गाय शी वुड बी थिंकिंग ऑफ डेटिंग और समथिंग एंड ऑल. तो या
0: बुरा नहीं लगा आपको?
1: अब लगा ना. तो अब हुआ क्या कि लड़के ने भी पूछा, सो आई टोल्ड हिम कि नो वो ऐसे लड़कों को भाव नहीं देती, सो डोंट गेट योर होप्स हाई. सो दे अभी नाउ रिसेंटली सो दिस हैपेंड लाइक अ ईयर बैक अगेन, इट वाज माय बर्थडे सो दे मेट अगेन एंड देन दे काइंड ऑफ लाइक दिस होल थिंग गॉट अनरैवल्ड अबाउट बिकॉज बोथ ऑफ देम वर रियली एंग्री विद ईच अदर, टर्न्ड इनटू दिस यू नो कन्फेशन सीन इन माय पार्टी. And because it was my birthday, तो किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे, पर फिर अगले दिन तो अब मेरे से कोई बात नहीं करता. मेरे से पूछा तुमने झूठ क्यों बोला, मैं उसको कैसे बताऊँ कि मैंने क्यों झूठ बोला.
0: बेब यू नो इस सारे चक्कर में इफ देयर इज वन थिंग दैट कैन हेल्प यू ओनली वन थिंग वो सिर्फ रोशिफिकेशन है, बिकॉज अदरवाइज आई डोंट सी एनी होप फॉर यू हियर माई लव.
2: यू've been roshified.
0: If I was to put myself in your shoes, then प्यार तो अंधा होता है पुष्पा. आपसे बात करके बहुत मजे आए मिस्ट्री कॉलर, और अगर आपकी भी जिंदगी में मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह आपके दिमाग के 5-6 पेज मिसिंग है, then I think you're the perfect रोशियन. Hit me up on Insta या FB and we will get talking. नाम 6 मिर्ची रोशी, काम 6 आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: के खराब तू झरना कहीं तेरी दुकान पे पंगा ना लूं मेरे साथ काफी हो गई बक बक
1: बाकी बातें पीने बाद
0: शुभ हो बादशाह।

अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ये शेयर कर रही हूँ कि जब आप किसी इंसान को मिलते हो और सामने वाला इंसान कहता है दैट दे आर नॉट रियली लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या वो डेट भी नहीं करना चाहते हैं लेकिन दे रियली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद यू, वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है दैट वो चाहते हैं दैट यू बी टुगेदर लेकिन उस इंसान के टर्म्स पर जहां उसे आपको कमिटमेंट ना करनी पड़े इमोशनल या अदरवाइज. और अगर कोई आपसे ये बात कह रहा है देन माई सजेशन टू यू इज थोड़ा सा पॉज करके सोचो इज दैट वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ समबडी हु इज नॉट विलिंग टू कमिट एंड इफ यू आर ओके विद इट गो अहेड एंड डू इट जैसे मैंने किया बट द एंड रिजल्ट इज काइंड ऑफ पेनफुल एंड हार्ट ब्रेकिंग फॉर वो इंसान जो फुल कमिटमेंट लेकर इस रिलेशनशिप में घुसता है. और अगर आप ऑलरेडी इसे फेस कर चुके हो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर लेट्स टॉक अबाउट इट. एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेट मी टेल यू वन फाइनल थिंग, जिसके पास लव है उसके पास सब है एंड आई लव यू लोड्स.

Energy. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: आजकल फिल्म देखने के बाद सबसे डेंजरस सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, सबसे डेंजरस सवाल है कि मुझे इसे देखना क्यों चाहिए था, क्योंकि ऑडियंस बदल गई है। अब सिर्फ बड़ा स्टार काफी नहीं है, सिर्फ बड़ा बजट काफी नहीं है, सिर्फ VFX का शोर भी काफी नहीं है। कहानी में कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसा जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी दिमाग में चलता रहे। शायद इसलिए हिंदी सिनेमा के बीच का वो खाली स्पेस फिर से भर रहा है। कभी एक पुरानी याद नई आवाज बनकर लौट जाती है, कभी एक छोटी सी कहानी बड़े पर्दे को चैलेंज कर देती है, और कभी बॉलीवुड हमें रोमांस के नाम पर ऐसे ऐसे लॉयल्टी टेस्ट दे रहा है कि हम खुद सोच रहे हैं भाई थेरेपी लेनी पड़ेगी क्या। तो इस हफ्ते फिर देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या टिक रहा है, और सबसे जरूरी क्या याद रह रहा है। हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी किक स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है काना नंबर 20, राघव जुयाल की भाई तेरा स्टार है का ट्रैक बाय अमित त्रिवेदी। दिस इज रंग बरसे
3: नंबर 20।

शायद 2026 में धुरंधर एक गहरी याद बन के रह जाए, लेकिन जब मेरी जेनरेशन थोड़ी केयरफ्री थी और जिम्मेदारियां उतनी भारी नहीं फील होती थी, तब भी एक याद थी। तीन दोस्त, एक गाड़ी और स्पेन की सड़कें, और सामने पूरी जिंदगी। 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने हमें यही तस्वीर दी थी। अर्जुन को समंदर में उतरना था, इमरान को अपने अंदर का डर खत्म करना था, और कबीर को अपनी जिंदगी का फैसला करना था। और हम सिनेमा हॉल से निकले तो लगा कि हाँ यार, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। फिर 15 साल निकल गए। वो तीन दोस्त तो स्क्रीन पर कहीं रुक गए, लेकिन हम नहीं रुके। हमारे भाल बदले, चेहरे बदले, दोस्तियों के बीच नए नाम आ गए, कुछ लोग शादी तक पहुंच गए, कुछ सपने रस्ते में रह गए। और शायद इसलिए, अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल कभी आता भी है, तो मुझे यार स्पेन की एक और रोड ट्रिप नहीं चाहिए। मुझे देखना है कि उन तीन दोस्तों के साथ जिंदगी ने क्या किया, क्योंकि पहली फिल्म में तो वो जिंदगी को ढूंढने निकले थे, लेकिन अब शायद जिंदगी उन्हें ढूंढने आ गई है। नंबर 18 पर है चटनी धमाल 4 से, बट जिस ट्रिप पर निकले हैं उसे पूरा करते हैं। वो ट्रिप जिसकी हवा आज भी चलती है, ख्वाबों के परिंदे। शायद इस बार हम स्पेन नहीं देख रहे, शायद हम खुद को पीछे मुड़कर देख रहे हैं।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 11

0: माशूका, एक ऐसा गाना जो सुनते ही बॉलीवुड रोमांस की पुरानी आदत याद आ जाती है। लेकिन कुछ फिल्म्स की आदत नहीं होती, उनसे उम्मीद होती है। कुछ महीनों पहले जावेद अख्तर साहब ने बंटवारा 1947 को लेकर एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर एक्सपेक्टेशंस सीधा आसमान तक पहुंच गए थे।
1: एक प्रेडिक्शन में करना चाहिए, आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट, इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर, दैट पिक्चर इज नॉट ट्रू। मैं आपको बताता हूँ, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं, मैं आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइएगा।
0: अब जरा सोचिए, आमिर खान इज प्रोड्यूसर, राजकुमार संतोषी डायरेक्टिंग अ फिल्म आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा एज द कास्ट, जावेद साहब के लिरिक्स और ए आर रहमान का म्यूजिक। यार ये कॉम्बिनेशन फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है। और फिर वो फिल्म आती है और उसका म्यूजिक भी आता है और एक अजीब सी चीज होती है, कुछ भी पीछा नहीं करता। ना वो एक मुखड़ा जो दिमाग में अटक जाए, ना वो एक लाइन जो आप किसी दोस्त को भेजें, ना वो एक गाना जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ घर आए। और मुझे इसलिए हैरानी नहीं है कि बंटवारा 1947 का कोई गाना एक सुपरहिट गाना नहीं बना, या शायद मिर्ची टॉप 20 पर नहीं आया। मुझे हैरानी है कि एआर रहमान और जावेद अख्तर की फिल्मोग्राफी से निकला हुआ एक भी गाना अभी तक मेरी यादों में जगह नहीं बना पाया। हो सकता है कि वक्त बदले, हो सकता है दैट दिस एल्बम ग्रोज ऑन मी, हो सकता है कि कोई गाना धीरे धीरे अपना रास्ता बना ले, लेकिन तब तक मैं उस एक गाने का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग। और जब बात आमिर खान और एआर रहमान की हो, तो एक वक्त था जब दोनों ने ऐसे गाने दिए थे जो आज भी बिना किसी इंट्रोडक्शन के दिल में उतर जाते हैं। माई रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रैक्स एवर, तू बिन बताए, रंग दे बसंती से।
2: Top 20 Rewind.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 4।

16 साल से रिलेशनशिप में हो, साथ रहते हो, खुश हो, शादी की जरूरत भी महसूस नहीं होती। एंड फिर बॉलीवुड कहता है एक काम करते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने ही बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए कन्विंस करते हैं, लॉयल्टी टेस्ट करवाते हैं। वेलकम टू कॉकटेल 2 विथ रश्मिका मंदाना एज दिया, कृति सैनन एज एली एंड शाहिद कपूर एज कुणाल। एंड ऑनेस्टली दिया, 2026 है, थेरेपी नाम की भी एक चीज होती है। लेकिन कॉकटेल 2 का प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि इसकी असली लव स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड को कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक के बीच का फर्क आता ही नहीं है। They forgotten about it. Jealousy को पैशन बना दिया है, possessiveness को प्यार, stalking को persistence और manipulation को relationship test. कभी कभी cheating को भी true love कह दिया जाता है। और हम देखते रहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर दो खूबसूरत लोग अगर खड़े हो, बैकग्राउंड में एक बड़ा सा रोमांटिक गाना बज रहा हो, तो हम हर रेड फ्लैग को गुलाबी चश्मों से देखते हैं। शायद रोमांस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको कंफ्यूज करता रहे, रोमांस शायद वही है जहां आपको टेस्ट देने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर 16 साल बाद भी अपने पार्टनर की लॉयल्टी चेक करने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत पड़ रही है, तो प्रॉब्लम लव ट्रायंगल में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है और आपके रिलेशनशिप में। And that is what Cocktail 2 tried to explore when I watched it on OTT. यार बॉलीवुड को भी शायद अब ये समझ लेना चाहिए that audience रोम कॉम्स चाहती है, टॉक्स कॉम्स नहीं। We don't want toxic love. But from toxic love, I want to play sweet innocent love. बर्फी नाम की फिल्म, उसका एक गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में, आशिया। It's my special request of the week. Special.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नंबर 3।

0: कुछ आवाजें चार्ट्स पर नहीं आती हैं, चार्ट्स को अपना घर बना लेती हैं। एंड गहरा हुआ ने इतने हफ्तों से कुछ ऐसा ही किया, लेकिन आज बहुत वक्त बाद उसकी जगह कोई और आ गया है। गाना बेशक अलग है लेकिन आवाज वही है, अरिजीत सिंह। लेकिन इस बार वो एक नए गाने के साथ नहीं, एक पुरानी याद के साथ लौटे हैं। आवारापन, एक फिल्म जो 2007 में आई थी, जिसके गाने हमने MP3 प्लेयर्स में भरे, आईपॉड्स में संभाले, फोन बदलते रहे, लेकिन गाने नहीं बदले। तो फिर आओ, तेरा मेरा रिश्ता, और इतने सालों बाद सवाल यही था, आवारापन का दर्द दोबारा कैसे लिखोगे यार? अमाल मलिक के सामने मुश्किल गाना बनाना नहीं था, मुश्किल था एक याद बनाना, और उस याद के लिए अमाल को एक आवाज चाहिए थी।
1: आप इनिशियली अरिजीत के फर्स्ट 3-4-5 इयर्स में आप हो सकता था कि आप कोई भी गाना दे दो अरिजीत के नाम से चल जाए, अब वैसा नहीं होता है और किसी के साथ भी नहीं होता है। गेट द बिगेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री ऑल्सो, अरिजीत सिंह ले लो, आप सोनू निगम ले लो, अगर गाने में बात नहीं है तो आप इतना ही विंडो तक उसको संभाल के बचा के प्रमोट करके यू कैन सेव इट। बट इफ इट इज गोइंग टू बी हर्ड एंड लव्ड एंड ऑल, तो सिंगर का भी हार्ट होना चाहिए, कंपोजर का भी हार्ट होना चाहिए, लिरिक्स राइटर सबका एक साथ में वो एनर्जी से गाना बनता। सो व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग, इट वाज नथिंग कि उसने कोई पहले प्रॉमिस किया या हम लोग की कोई डील थी, यू नो पीपल ऑलवेज थिंक अच्छा कोई पुराना रिकॉर्डेड गाना अब रिलीज हो गया। सो सिंस अ ईयर इट इज बीन इन माय वॉइस, समवन comes once in an era and becomes an Arijit Singh. Not everyone has the skill set also, not everyone has the blessing of God also, and not everyone has the heart also like him to step away in the prime. Yani he himself also used to tell, is gaane ke liye bhi usne mere liye ladai ki hai, usne bola hai sabko, are Amal ne itna acha gaya mujhe kyun gawa rahe ho. To maine bola aisa mujhe chahiye, I said in log kisi ki bhi nahi hai, I said meri requirement hai that you at least see if you like the song, pura ban gaya, check it out. So it was just about 3-4 months before Abhi that song came that he started recording and revisited the song 2-3 times.
0: और आज गहरा हुआ को पीछे छोड़कर वही आवाज फिर से नंबर वन बन गई है। This is ये आवारापन, the new undisputed number one song on the Mirchi Top 20.

0: ये आवारापन मिर्ची डॉट 20 को एक नई जगह पहुंचा दिया इसने, और शायद इसलिए गाने इतने कमाल के होते हैं। कुछ सिर्फ चार्ट्स पर ऊपर जाते हैं और कुछ सीधा दिलो दिमाग में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। वेल दिस एपिसोड इज डन, लेकिन मैं वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम टू सेट द पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां आपके लिए हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन लेकर आते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है। वी आर गोइंग टू हैव सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर, तो स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू आउट द काउंटडाउन। सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी। पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार मूव बॉडीज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शान एंड दीदार कौर की आवाज में उदिपन शर्मा कम म्यूजिक, श्लोक लाल के लिरिक्स, गाने का नाम है दिलदारा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: ऐसा क्या है ना शान की आवाज में कि उनके गाने को जब हम सुनते हैं वी कैन इमेजिन हिम स्माइलिंग, कि ये गाना गाते हुए कैसे स्माइल कर रहे होंगे। मैं उनके बारे में बात करते हुए भी स्माइल करने लग जाती हूँ दीदार कौर एंड शान की आवाज में। दैट वॉज दिलदारा दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो मुझे। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव जो गाना हमें पसंद आने वाला होता है ना, वो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है। कब कैसे सुनना है, हम कौन सा अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं कि आज मैं वो गाना जाके सुनूंगी और मुझे वो गाना अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं होता है। वी जस्ट स्टंबल अपॉन दैट सॉन्ग। मे बी मैंने रेडियो पे चलाया हो, आपने सुन लिया हो, आप किसी कैफे में है और वहां वो गाना सुना हो। इनफैक्ट मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि पहले वो जो रियलिटी शोज आते थे ना टीवी पे, कोई कंटेस्टेंट जो गाने गा रहे थे लाइव परफॉर्मेंस, उनके थ्रू आई यूज्ड टू लव दोस सॉन्ग्स। एंड देन रिसेंटली इट्स ऑल अबाउट ओटीटी शोज फॉर मी। आई रिमेम्बर मैंने नेटफ्लिक्स की एक ओटीटी सीरीज पे सबसे पहली बार प्रतीक कुहाड़ का तूने कहा मैंने सुना था, एंड आई लव द सॉन्ग। बंदिश बैंडिट्स के कितने सारे गाने हैं जो मैं बहुत पसंद है। देन लास्ट ईयर मिस मैश का, इट्स इनक्रेडिबल दैट हमें अब ओरिजिनल म्यूजिक मिल रहा है फ्रॉम ओटीटी शोज। इश्क है फ्रॉम मिस मैश इज वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स। ये गाने इतने बड़े हुए, लोगों को इतने पसंद आए कि इनकी अपनी अलग पहचान बन गई। और काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, इट्स ऑल्सो फ्रॉम अ ओटीटी शो एंड इट्स अ नई नवेली एंट्री ऑन अ काउंटडाउन। मुसाफिर कैफे का गाना है। आई नो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि क्यूट सिंपल सी लव स्टोरी है। मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ, अगले वीकेंड का प्लान है मैं देखूंगी। दो लोग पहाड़ों में छोटा सा कैफे, सबका यही ड्रीम है। एंड जो गाना डेब्यू कर रहा है इस हफ्ते, उसका नाम है काफी है ना। ये गाना उस सिंपल सी लव स्टोरी की सिंपलिसिटी को डिफाइन कर देता है। दैट अल्टीमेटली जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं, या हाउ डू वी वांट टू फील लव्ड, कि किसी के लिए हमारी प्रेजेंस बस इनफ है, दैट काफी है ना। अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। प्रियांश श्रीवास्तव एंड जुनिंदा गांधी की आवाज में है गर्वित प्रियांश, शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम। उनकी कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है काफी है ना। आई नई नवेली एंट्री ऑन द काउंटडाउन from Musafir Cafe. It debuts seedha on Gaana number 8. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 8.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: 98.3 Mirchi. It's hot.

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: जब फरक ने कहा हमारा ठोकरों से खास नाता है, the entire generation felt it together. फरक की आवाज उन्हें की कॉम्पोजिशन, दिस सॉन्ग तारे इज माई फेवरेट फ्रॉम द काउंटडाउन. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले हमने सुना संजू राठौड़ का बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: पर. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, हैंडल इज @RJKanika. फॉलो करना बिल्कुल फ्री है. गाने सुजेस्ट करती हूँ, बातें बताती हूँ, कोई आपको बातें शेयर करनी हो बिंदास आके हिट मी अप. इट्स टाइम टू पुट अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन अ सॉन्ग जो अभी टॉप 10 गानों में एंट्री नहीं मारा है, पर जिस तरह से जनता इस गाने को प्यार दे रही है, डेफिनेटली इट विल मेक इट द काउंटडाउन. आज के स्पॉटलाइट का गाना इज बाय वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट ऑफ दिस काउंटडाउन ऑफ इंडस्ट्री टुडे. आई एम टॉकिंग अबाउट बंजारे. उनका नया नवेला गाना आया है बरसात. द सॉन्ग कैप्चर्स दैट फीलिंग कि जब आपका ब्रेकअप हो गया या किसी ने आपको छोड़ दिया है, दैट हर्ट्स ऑब्वियसली, बट पता है उससे भी ज्यादा बुरा क्या लगता है, व्हेन वी रियलाइज कि कोई हमसे आगे बढ़ चुका है, वो मूव ऑन कर चुका है. ये गाना एग्जैक्टली वहीं पर है. बट बिफोर वी टॉक अबाउट द सॉन्ग एंड वी लिसन टू द सॉन्ग, लेट्स टॉक अबाउट बंजारे, जिनका गाना बैरन मेरा और आपका दोनों का फेवरेट है. ये पूरा गाना आगे काउंटडाउन में फीचर होने वाला है. बट लेट्स टॉक अबाउट दीज आर्टिस्ट. इट्स अ ब्रदर डुओ कॉल्ड सुमित एंड अनुज जो कुरुक्षेत्र जिले से आते हैं, जिन्होंने हरियाणवी म्यूजिक के टूवर्ड सबकी सोच बदल दी. रिच सॉन्ग राइटिंग, वेरी फोक स्टोरी टेलिंग का उनका अंदाज है एंड गानों को इतना होलिस्टिक बनाते हैं दैट यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स द इमोशन जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. एंड सेम वही बात बरसात. इट गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ ग्रीफ जो एक बंदी फील कर रही है, जिसका गम खालीपन इस गाने में आपको जोर जोर से सुनाई देगा. द सॉन्ग गोज थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. पहले तो वो मानती ही नहीं है, दैट इज डिनायल. फिर वो टूट जाती है, दैट्स पेन. फिर उसी गाने के दौरान वो ये बात समझती है कि जो छोड़ के चला गया वो मुड़के नहीं देखने वाला, दैट इज एक्सेप्टेंस. एंड देन उसके बाद शी डिस्कवर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग, जहां वो खुद के सुकून को प्रायोरिटाइज करती है. वो ये बात चुनती है कि अब इस फीलिंग को पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, दैट इज लेटिंग गो. एंड वी ऑल हैव फेल्ट दीज इमोशंस कभी ना कभी किसी के टूवर्ड्स किसी स्टेज पर. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बंजारे आर बैक एट इट अगेन. उनका नया नवेला गाना कॉल्ड बरसात, रीचिंग फॉर अ हार्ट, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट. बंदी का नाम है RJ कनिका. एंजॉय.

0: कितने मेरी।
1: गॉड डैम, आप हरियाणवी नहीं समझते, मैं नहीं समझती हूँ, बट वो फीलिंग ऑफ लेटिंग गो वो पूरी अच्छी तरीके से इस गाने में समझ में आती है। गाने का नाम है बरसात बाय द वन एंड ओनली बंजारे ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट दिस वीक। बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम मुसाफिर कैफे। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में, राघव कौशिक का ही म्यूजिक। गाने का नाम है दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
2: Number 5.

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: You cannot not groove to this song. Anish Sarkar, Hruday Ka Gaana, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, 11 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार, this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Kanika ke saath.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. एंड समटाइम जो गाने हमें अच्छे लगने होते हैं ना, हम उन्हें ढूंढने नहीं निकले होते हैं, वो बस हमारे रास्ते आ जाते हैं. ऐसे ही मैंने पिछले हफ्ते एक गाना सुना कॉल्ड बावरे. इट्स वन ऑफ दो सॉन्ग्स जिसको सुनते ही मैंने अपने चार दोस्तों को बोला कि यार ये गाना सुन, बहुत अच्छा लगेगा. तो आई एम गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू, व्हिच इज बेसिकली अबाउट वन साइडेड लव. एंड इतने पोएटिक वे में इन्होंने वन साइडेड लव के बारे में बात करी है. यू नो, वो चांद है, चांद के आसपास एक रोशनी है जो ना उस चांद को छू पाती है ना उसे छोड़ के जा पाती है, बस वो है. उस रोशनी के जरिए यहाँ पर वन साइडेड लव के बारे में बात हुई है. ऑनेस्टली गानों में अच्छा साउंड करता है, आई होप किसी को कभी ना हो, बट प्लॉट ट्विस्ट ये है दैट इस गाने में फीलिंग गहरी है, सोच बहुत गहरी है, बट गाना बिल्कुल भारी नहीं है. इट्स अ ब्रीजी पॉप सॉन्ग, बहुत मेलोडिक रैप है. विकेट सनी ने इसे ऐसे लिखा है कि दर्द छुपता नहीं है पर गाने की फीलिंग आप पर बोझ की तरह भी नहीं आती है. इट्स लाइक अ फील गुड कंपेनियन एंड यू आर एंजॉयिंग इट थॉरली, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग. तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. गाने का नाम है बावरे बाय ऋषि रॉय एंड विकेट सनी स्टारिंग कशिश रत्नानी. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: कह दूं जो दिल में...

That was a song called Bavare by Wicked Sunny and Rishi Roy. One of those songs, मुझे पता है अब आप सुन के दो दोस्त को recommend करोगे कि इसको जरूर सुनना. At RJ Kanega on Instagram पर आओ, ऐसे कोई गाने हैं you want me to play next week, हमसे आके share करो. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. 21 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. गाने का नाम है Shisha, मिटर और की composition, उन्हीं की आवाज, also featuring Swara Verma. पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके Shisha is playing right next for you on Gaana number 3. You're listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गाने हम आपके लिए लाते हैं। कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पर @RJKanika। कोई गाना बताना हो, कोई सजेशंस हो, बिंदास आके हिट मी अप। कोई सवाल है, बिल्कुल वी वेलकम इट @RJKanika पर बताओ। मैं और मेरे प्रोड्यूसर अश्काय, वी टेक योर सजेशंस, रिकमेंडेशंस वेरी वेरी सीरियसली। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: तेरी दीवानी।
1: गाने का नाम है तेरी दीवानी, कैलाश खेर की आवाज में बाय हिज बैंड कॉल्ड कैलासा। साल था 2000 एंड कैलाश खेर की आवाज वॉज द मोस्ट बुलंद आवाज ऑफ दैट ईयर। अब इतनी पुरानी बात लगती है दैट आई वॉन्ट टू रियली पिक माई ब्रेन एंड थिंक दैट मैंने क्या सोचा था जब मैंने सबसे पहली बार कैलाश खेर की आवाज सुनी थी, बिकॉज इट साउंड सो अर्दी रॉ, कुछ कच्ची मिट्टी से जुड़ी हुई आवाज है उनकी। एंड दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर। इस गाने की ब्यूटी मुझे ये लगती है दैट हर किसी के लिए तेरी दीवानी गाने का मतलब अलग है। किसी के लिए इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, इश्क वाला, प्यार मोहब्बत वाला, दैट आई एम ऑल अबाउट यू बेब, पर किसी के लिए ये गाना एक इबादत के जैसे है, अ डिवोशनल सॉन्ग। देन देयर आर आल्सो पीपल जिनके लिए एक सूफी गाने की तरह है, जहां प्यार और बंदगी में कोई फासला नहीं होता, जहां आप किसी इंसान को इतना चाहते हो दैट वो उस इंसान की ही इबादत करने लगते हो। यू माइट नॉट अग्री विद किसी और का वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग, बट दैट्स अ ब्यूटी ऑफ आर्ट ना, टू ईच देयर ओन। एंड तेरी दीवानगी बाय कैलासा एग्जैक्टली वही गाना है। ये किसी एक बॉक्स में फिट ही नहीं हो सकता। ये आप अपने दिल टूटने पर भी सुन सकते हो और किसी दिन सुकून ढूंढने के लिए भी। शादी में एक रोमांटिक गाने की तरह भी चल सकता है एंड अकेले कमरे में आंखें बंद करके भी ये गाना अच्छा लगता है। बट व्हाट्स कॉमन अमंग्स ऑल दीज थिंग्स इज इस गाने की कॉम्पोजिशन, कैलाश खेर की आवाज एंड व्हाट इट मेक्स यू फील। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। कैलाश खेर की आवाज में कैलासा द बैंड का गाना दिस इज तेरी दीवानी ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

0: डूड, कैलाश खेर की आवाज में जो दर्द है इन तेरी दीवानी, वो दर्द सीधा कलेजे पे लगता है, दिल नहीं कलेजा। दैट वॉज तेरी दीवानी ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ 90s 2000s के वो गाने जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है हमसे आके शेयर करो। मैं और अशका आपके सारे गाने सारे रिकमेंडेशंस को ध्यान से देखते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस हफ्ते के काउंटडाउन में गाना नंबर 2 पर इज हर्ष नुस्सी का गाना साडी सुन। पिछले हफ्ते से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, आई स्वेयर आई एम नॉट इवन किडिंग, पांच भी नहीं, ये गाना पिछले हफ्ते से पूरे 7 पोजीशंस ऊपर उठ के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज येट अगेन बैरन। बंजारे दे आर्टिस्ट का गाना 21 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, हर्ष नुस्सी का साडी सुन ऑन नंबर 2, बंजारे का बैरन ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

Mirchi. It's hot.

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से।

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला। तुम्हारे साथ में यू आर ऑफिशियली ट्यून इनटू मिर्ची मॉर्निंग्स। आज है रक्षाबंधन, वो ब्यूटीफुल फेस्टिवल जहाँ पर सिस्टर्स गेट अ राखी, ब्रदर्स गेट एन इमोशनल स्पीच और फिर दोनों मिलकर अमेज़न पे गिफ्ट का लिंक भेजते एक दूसरे को। लेकिन ऑनेस्टली यार, राखी इज नॉट जस्ट अबाउट भाई मेरी रक्षा करेगा, इट्स अबाउट दैट वन पर्सन हु विल रोस्ट यू मर्सिलेसली, स्टील ऑल योर फूड, एक्सपोज योर चाइल्डहुड एम्बैरेसिंग स्टोरीज इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स। लेकिन द सेकंड समवन एल्स मेसेस विद यू, तब वो सामने खड़ा हो जाता है या खड़ी हो जाती है कि एक्सक्यूज मी, वो जैसा भी है या जैसी भी है मेरा वाला है, उसे मेरे अलावा कोई ट्रोल नहीं कर सकता, कोई रोस्ट नहीं कर सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता। और अगर तुम फिलहाल फैमिली से दूर हो, टुडे इज योर रिमाइंडर, कॉल दैट सिबलिंग, कजन, बेस्टी, जिसको भी तुम राखी से रिलेट करते हो, चाहे वो तुम्हारा चोजन फैमिली मेंबर हो या फिर गॉड गिवन, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया और गिफ्ट का स्क्रीनशॉट भेजना बिल्कुल मत भूलना। मैं वो प्रिसला तुम्हारे साथ में, वी गॉट अमेजिंग म्यूजिक कमिंग अप, ढेर सारी मस्ती एंड योर मॉर्निंग डोज ऑफ अपडेट्स अलोंग विद माय बैंटर विद यू। तो अभी जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अपने साथ चिपकाए रखो एंड गो एंड फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, यू आर लिसनिंग टू प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो अब देखते हैं मदर नेचर का मूड आज कैसा है। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 68 डिग्रीज फारेनहाइट, स्काइज आर क्लाउडी, लेकिन फील हो रहा है 71 डिग्रीज फारेनहाइट तक। यानी कि ह्यूमिडिटी का वो क्लासिक देसी लॉजिक, टेम्परेचर कुछ और होगा, बॉडी को कुछ और फील होने वाला है। 11 बजे तक क्लाउड्स थोड़े से ब्रेक लेंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग पार्टली क्लाउडी कंडीशंस। आज का टेम्परेचर जो है उसका रेंज है 67 से लेकर 82 डिग्रीज फारेनहाइट तक, लेकिन फील होने वाला है 68 से लेकर 84 डिग्रीज फारेनहाइट तक। कल का हाई था 78 डिग्रीज फारेनहाइट, आज का हाई पहुंचेगा 82 डिग्रीज फारेनहाइट तक। सो आज थोड़ा सा वार्मर, थोड़ा सा ज्यादा ड्रामेटिक लगने वाला है। एंड गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में एक्सपेक्टेड Precipitation is 0 millimeters. कल जो 62 millimeters की बरसात हुई है उसके बाद बादल जो है वो आज छुट्टी मना रहे हैं रक्षाबंधन की। लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट हेड्स अप है, फ्लड वॉच है with conditions expected around 12 PM। और जल्दी से तुम्हें याद दिला दूं, नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा, ये कॉन्टेस्ट चल रहा है मिर्ची पर जिसमें पार्टिसिपेट करके तुम जीत सकते हो कुछ अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स courtesy नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। फटाफट से अपना व्हाट्सएप खोलो, टाइप करो राखी RAKHI along with your full name and bhej do se 9033 mirchi par, that's 9033647244, and to mujhe dm bhi kar sakte ho, mirchi pris is my handle name, that is mirchipris instagram or x par, in association with virani jewelers on oak tree road। Check out their festive special offers going on, 22 carat gold and diamond jewelry, ya phir visit karo viranijewelers.com par। And abhi mirchi dar bangers ka time hai, only on mirchi mornings। Mera naam है प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
1: वी हैव आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट विद अस. Let's talk to him. Hello.
2: Hi, good morning, Pris.
1: Hi, good morning. Akash, is it?
2: Yes, this is me, Akash, here from New York. Every day I listen to your morning mirchi, so it's been awesome.
1: Wow, thank you so much. So tell me, Rakhi ki kya preparation chal rahi hai?
2: Rakhi ki preparations to ye hai ki main aur my sister UK ja rahe hain, London ja rahe hain.
1: Wow.
2: Aur wahan pe main unko surprise dene wala hoon. And wahan pe acche se unke sare friends ko maine bulaya hai, invite kiya hai, surprise kiya hai. Unke पुरानी जो जितने भी मेमोरीज है वी वांट टू फिल्म इट एंड उनके सामने प्रेजेंट करेंगे एंड उनके पुराने फ्रेंड्स को हमने बुलाया है तो इट विल बी ग्रेट यू नो.
1: पूरा सरप्राइज है. व्हाट डू यू थिंक हर रिएक्शन वुड बी?
2: शी विल बी लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि बहुत से कनेक्शंस जो होते हैं जो डे टू डे पे नहीं मिल पाते हैं और हमारे फ्रेंड्स छूट जाते हैं तो उनको मैं सारे यूनाइट करूंगी. तो 30-40 डेज से ये प्लानिंग चल रहा है कि सबको यू नो एक जगह पे यूनाइट करना है एंड और उनका उस सब फूड से लेके सब कुछ उनका फेवरेट होने वाला है. कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग. सो दिस विल बी वन बिग सरप्राइज फॉर हर जो मैं अपने साइड से करना चाहता हूँ.
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड इट्स टाइम फॉर मिर्ची आवका 3। सबसे पहले, अ डैम हैज बर्स्ट अगेन इन टिबेट जस्ट 2 days आफ्टर अ ग्लेशियल कोलैप्स ट्रिगर्ड डेविस्टेटिंग फ्लैश फ्लड्स। नेपाल हैज इशूड एन अलर्ट आस्किंग लोकल्स, सिक्योरिटी पर्सनल एंड रेस्क्यू वर्कर्स टू स्टे इमीडिएटली अलर्ट, मूव टू सेफर एरियाज एंड वार्न अदर्स। चाइना हैज ऑल्सो वार्न्ड दैट एन ओवरफ्लोइंग बैरियर लेक कुड पोटेंशियली ट्रिगर अनदर फ्लैश फ्लड। सो इफ यू हैव फैमिली और फ्रेंड्स एनीवेयर इन द अफेक्टेड रीजन्स, प्लीज चेक इन विद देम एंड फॉलो local safety advisories. Number two, the government says it can manage search and rescue operations in Nepal through its own agencies and has declined offers of foreign rescue teams, including assistance offered by India, the US, China, UK, Japan and South Korea. The reported death toll has reached 469 with 1,545 people injured or rescued. Sending strength and prayers to everyone affected. And lastly, President Donald Trump has signed an order renaming Lake Ontario as Lake America in the US. Canada, however, says no, the lake remains Lake Ontario, with Prime Minister Mark Carney pointing out that the name is more than 400 years old. And that's your Mirchi Avaka 3 with me, Priscilla. Connect karo mujhse Insta or X par, mera handle name hai Mirchi Pris, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 346-4724. Stay tuned and stay hot.

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तेरी मम्मी की जय।

बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

गुड मॉर्निंग गाइज, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड डू यू नो इंडिया हैज फिनिश्ड फिफ्थ एट द 2026 वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप आफ्टर बीटिंग जर्मनी 3-1। एंड दिस इज पर्टिकुलरली बिग बिकॉज इट्स इंडियाज बेस्ट फिनिश इन 52 years। यस, यू हर्ड मी राइट, 52 years। आवर लास्ट बेस्ट फिनिश वॉज वे बैक इन 1974 when India came fourth. And what a finish, man. Ishika Chaudhary opened the scoring in the 42nd minute and then Navneet Kaur said, okay, ab meri bari hai, scoring twice in the 44th and the 47th minute. India ne miss out kiya hai on the semi-finals after that goalless 0-0 draw with Australia. Lekin instead of sulking, they came back and absolutely owned the fifth place match. And that's the kind of comeback we all love. है ना, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, बस अगले क्वार्टर की तैयारी शुरू हो चुकी है। एंड स्पीकिंग ऑफ थिंग्स दैट डिजर्व अ सेलिब्रेशन, रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर चल रहा है तनिष्क पर फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स और वहां पर तुम्हें मिल रहा है 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस। अगर अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेना चाहते हो तो फटाफट से अभी के भी वहां पर पहुंचो। एंड इफ यू हैव एनी ओल्ड गोल्ड लाइंग इन योर लॉकर एट योर होम, उसे लेकर जाओ, एक्सचेंज कराने पर 0% डिडक्शन वहां पर मिल रहा है तुम्हें। टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड। तनिष्क का फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स चल रहा है, अभी फिलहाल चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: हमारे साथ अगली पार्टिसिपेंट आ चुकी है लाइन पर, लेट्स फाइंड आउट क्या नाम है उनका। हेलो,
2: हाय, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड एंड माय नेम इज आचल।
1: हाय आचल।
2: या एक्साइटमेंट है, राखी की तैयारी है, स्पेशल बॉन्ड होता है ब्रदर सिस्टर का, सो जस्ट वेरी एक्साइटेड। ये वीकेंड पूरा सेलिब्रेशन रहेगा 2-3 दिन।
1: सो आपके भाई का नाम क्या है?
2: मेरे भाई का नाम सुमीर है।
1: सुमीर, और आपके साथ में है या वो इंडिया में है?
2: वो यहीं पर हैं, लोकली हैं, सो वी गोना मीट एंड सेलिब्रेट इट टुगेदर।
1: तो कैसे आप मनाते हो हर साल?
2: बस ये एक्साइटमेंट ही रहती है, मिलते हैं साथ में, खाना खाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं साथ में, बच्चों को भी, वो लोग भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो इस त्योहार का एक स्पेशल ये होता है कि जो हम लोगों ने पास में मेमोरीज चाइल्डहुड में रखी होती है वो सब रिवाइव हो जाती है। तो ये वी जस्ट गो आउट ईट इन द इवनिंग, पहले शाम को घर में राखी का फेस्टिवल करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मंदिर जाके भी सेलिब्रेट करते हैं उसको।
1: एंड आपको गिफ्ट मिलते होंगे बहुत अमेजिंग।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे इतना अच्छे अच्छे ज्वेलर्स हैं एडिसन में, तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं।
1: Wow.
2: Yeah.
1: That's amazing. And our contest
0: presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: देयर, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम फॉर गोल्ड का रेट अपडेट।
1: rajjewels.com विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग, आल्सो हैप्पी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। गोल्ड $4,600 $4,600 पर ट्राउंस ट्रेड कर रहा है। जब आप राखी सेलिब्रेशन के लिए अपनी बहन के लिए खूबसूरत सा तोहफा घर ले जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आइए 22 कैरेट गोल्ड 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड के साथ वो खूबसूरत सी ज्वेलरी 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ 9 मंथ की फाइनेंसिंग में आज पसंद करके अप्रूव होके घर लेके जाएं और 9 किश्तों में पैसे दें। वो रक्षाबंधन का तोहफा जो खूबसूरत और यादों से भरा हमारी मेमोरीज क्रिएट करे, rajjewels.com को खुशियों में शरीक रखें। थैंक यू।
0: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ, बने रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर एंड कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।
2: It's hot.

0: good morning. Priscilla here, bringing you your daily dose of Rashis on Mirchi Mornings.
1: Mirchi Rashi Zone.
0: It is यानी कि मेष राशि वर्क पर इक्विपमेंट ग्लिच या टची कोवर्कर मूड खराब कर सकता है. डीप ब्रेथ लो, लॉन्ग वॉक स्लो एंड रिप्लाई ऑल से पहले दो बार सोच लो. लकी कलर फॉर यू इज रेड. लकी नंबर इज 14. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, पैसा और पर्सनल बिलोंगिंग्स पर नजर रखो यार. वॉलेट को वेकेशन पर मत भेज देना. मेडिटेशन तुमको ग्राउंडेड रखेगी. लकी कलर इज सेज ग्रीन. लकी नंबर इज 28. जेमिनी यानी मिथुन राशि, रूटीन और अथॉरिटी से रिबेलियन का मूड हो सकता है. वर्ड को फिल्टर करके यूज करो. हर थॉट को प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाना जरूरी नहीं होता है. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 7. कैंसर यानी कर्क राशि, आज इंपल्स कंट्रोल इंपॉर्टेंट है. ड्राइव केयरफुली, स्पीक थॉटफुली और अननेसेसरी ड्रामा को नॉट इंटरेस्टेड बोलकर स्वाइप कर दो. लकी कलर इज बेबी ब्लू. लकी नंबर इज 19. लियो यानी कि सिंह राशि, हेल्थ थोड़ी सी स्लो कर सकती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट टास्क को मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड कर लो. आज लायन को भी पावर नैप अलाउड है. लकी कलर इज सनफ्लावर येलो एंड लकी नंबर इज 33. वर्ग यानी कन्या राशि, क्रिएटिविटी और करियर ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग चांस है. दो माइनर हेल्थ डिस्कम्फर्ट्स बॉदर कर सकते हैं. आइडियाज को नोटबुक में कैप्चर करो. ब्रेन का ऑटो सेव रिलायबल नहीं होता है. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 11. मैं हूँ प्रिसिला, मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप करना है तो नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अभी मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है. I'll be back with Rashi Zone Part 2. Stay tuned and stay hot.

0: back with Rashi's Own Part 2. Mera naam hai Priscilla. Ye hai Mirchi Morning.
1: Mirchi Rashi's Own.
0: Libra yani tula Rashi, anger ya sharp emotion ko control mein rakho, specially jab expenses badh rahe ho. Budget ko ignore karna romance nahi hota hai, financial horror story hota hai. Lucky color is royal purple, lucky number is 26. Scorpio yani ki vruchik Rashi, friends ke saath celebration ya shared happiness tumko deep joy dene wali hai. Aaj apne logo ko hug karo, unke saath time spend karo. Scorpio hugs usually limited edition hote hain. Lucky color is burgundy, lucky number is 9. Saturday एरियाज यानी धनु राशि, फिजिकल एलिमेंट से रिकवरी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, सो एक्टिव प्लान्स और स्पोर्ट्स में कमबैक पॉसिबल है. बस वार्म अप को ऑप्शनल मत समझा करो. लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 41. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, रैश बिहेवियर से क्लोज फ्रेंड्स अपसेट हो सकते हैं. स्पाउस या पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम कंफर्ट देगा. फोन साइड में रखो, दिल एकदम सामने. अपनी हथेली में. लकी कलर इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 18. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, रिक्रिएशन और रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट डे है आज. बट ट्रेड या बिजनेस हैंडल करते वक्त थोड़ा सा अलर्ट रहो. चिल मोड अच्छा है, ऑटो पायलट मोड अच्छा नहीं है. लकी कलर इज मिंट ग्रीन, लकी नंबर इज 32. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस मेरी जान, फुल मून इमोशंस को एम्पलीफाई करेगा. पर्सनल रिलेशनशिप को अपनी एक्सपेक्टेशंस पुश करने के लिए यूज ना करें. प्यार नेगोशिएशन टेबल नहीं होता है. लकी कलर इज मूनस्टोन सिल्वर, लकी नंबर इज 5. एंड दिस इज इट फॉर राशि जोन. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. फॉलो मी एट मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: झुमका रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड जस्ट बिफोर आई से गुडबाय, एक क्विक देसी फैशन अपडेट लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए. नमस्ते न्यू जर्सी, फ्रंटियर रास इज नाउ ओपन इन एडिसन राइट हियर ऑन ओक ट्री रोड. सो अगर तुम ढूंढ रहे हो हैंडलूम साड़ीज, ब्राइडल कुटूर, मेन्स वेयर या फिर रेडी टू वेयर, यू हैव गॉट अ न्यू डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर विच हैज अ 70 ईयर लेगेसी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. देयर इज प्लेंटी ऑफ दैट ब्यूटिफुल देसी डिटेल टू डिस्कवर देयर. द USA flagship store is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison. So next time you're on Oak Tree Road, maybe check out Frontier Ras, which is now open in Edison. Lekin ha jaoge to ye yaad rakhna ki khali haath wapas laut kar nahi aaoge. And with that, this is Priscilla signing off from Mirchi Mornings. Thank you for hanging out with me this morning. Follow me, Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp karo 9033 Mirchi is my number, 9033647244. Happy Raksha Bandhan to everyone celebrating. You have a wonderful weekend, a lot of festival celebrations, have a lot of laddus, and of course, have a lot of fun. Mirchi Sundhira, stay tuned and stay hot.

0: हर एक चीज का आखिरी बार तो होता ही होता है, और ऐसे ही वो एक दिन भी आया था हमारी जिंदगी में जब हमने कुछ आखिरी बार किया। और आज ना, ऑल ऑफ अ सडन आई कैन थिंक ऑफ दैट डे जब मैंने अब तक आखिरी बार खो खो खेला था।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. हाँ यार, all of a sudden मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैंने last time खोखो खेला था अब तक, और वो इसलिए याद है क्योंकि हम थोड़े बड़े हो गए थे जब हमने खोखो खेला था। बचपन का टाइम होता तो शायद इतना मुश्किल हो जाता मेरे लिए याद करना कि मैं ना याद कर पाती। एंड ये ना 2015 की बात है, तो 10 साल पहले यानी कि 2015 में दिवाली की छुट्टियों में हम सारे कजिन्स ने प्लान बनाया था कि हम इकट्ठे होंगे, और एक दूसरे को मनाने के बाद जब हम इकट्ठे हुए तो पता नहीं क्यों और कहां से ऑल ऑफ अ सडन खो खो खेलने का प्लान हो गया। एंड माइंड यू, हम सब बड़े हो गए थे तब भी, हाँ मतलब कोई कॉलेज में है, किसी की जॉब नई नई शुरू हुई, ऐसा सारा सबका कुछ ना कुछ यू नो अडल्टिंग शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जो बचपना था ना हमारे अंदर वो नहीं गया था, और हमने खो खो खेला। और मुझे आज भी वो शाम याद है यार, इतने मजे किए थे हमने, इतने मजे किए थे कि बस वो जो शाम है ना वो छपी हुई है मेरे दिल और दिमाग पे। लेकिन वो शायद आखिरी बार इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने ना जिंदगी में कदम रखा ही था, सबने कमाई करनी शुरू करी ही थी, अडल्टिंग सबकी शुरू हुई थी, उसके बाद ना सबने लाइफ को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया। जॉब्स को लेकर इतने नर्वस कि यार अगर छुट्टियां ज्यादा ले ली तो बॉस डांटेगा, काम को लेकर इतने ज्यादा एंग्शियस कि सिर्फ काम में ही घुसे हुए, अब तो फोन पे बात करने का भी टाइम नहीं है। और ना मैं इनको बुरा नहीं कहूंगी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि यार होता है शायद ऐसा लाइफ में कि एक वक्त ऐसा आता है कि आप इतने बिजी हो जाते हैं और आपको लगता है कि जॉब्स ही इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जहां पर आपको ये समझ में आ जाता है कि नहीं यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सबसे मिलना रेगुलरली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो टाइम भी आएगा, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ है ना तो आपके लिए भी आएगा, और मेरी जिंदगी में तो डेफिनेटली आएगा क्योंकि मैं सबको याद दिला रही हूँ ना ये बात। एग्जैक्टली माय पॉइंट। चलो जी, अभी तो फिलहाल मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ कि स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। और सुनो, एक काम और करो, अगर आपको याद है कि आपने लास्ट टाइम कोई बचपन का खेल या कोई बचपन का काम किया हो तो DM me डेफिनेटली on my Instagram handle which is मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड।

0: स्टेट्स में प्रोफेसर वायरस ने कहा था कि लोगों को ना सिर्फ नंबर वन याद रह जाता है, बाकी और कुछ याद नहीं रहता, और बात बिल्कुल सही है। तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि नंबर वन नहीं यार, जो लास्ट किया था ना, जो लास्ट हुआ था उसे मेमोरी में ताजा किया जाए।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. And you know, मुझे आज जो you know कुछ moments ऐसे हैं जो last कभी हुए थे, जैसे कि school का वो आखिरी दिन, यानी कि farewell वाला दिन. Boards का time था, of course. सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे, प्रेप लीव चल रही थी, स्कूल तो हम जाते नहीं थे, और उसी दौरान फेवल का टाइम भी आ जाया करता था। और किसी ने ना इस बात पे ध्यान नहीं दिया था कि हमारे टीचर्स, हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, हमारे जितने भी स्कूल के लोग हैं, सारे के सारे एक छत के नीचे इकट्ठा, ये आखिरी बार हो रहे हैं, इसके बाद नहीं होंगे, किसी ने नहीं सोचा। इतना टेकन फॉर ग्रांटेड था वो दिन, क्योंकि हमारा ध्यान पता है किन सारी चीजों पर था, कि कौन कैसा लग रहा है, और मेहनत भी बहुत की थी यार, ऑफ कोर्स। आई मीन स्पेशली मैंने साड़ी खरीदी थी, जबकि मम्मा के पास पूरा साड़ियों का कलेक्शन है ऑलरेडी, लेकिन फिर मम्मा ने अपनी तरफ से प्यार मोहब्बत से मुझे एक सिल्वर का लॉकेट भी दिलाया था, और स्टूडियो में ले जाकर फोटो खिंचवाई थी। वैसे पार्लर में जाकर तैयार होने का सीन तब तो इतना था नहीं भाई, तो हमारी जो पड़ोस वाली दीदी थी ना, वही आई थी मुझे तैयार करने के लिए। यस, और क्या दिन था वो वाकई में, खाना पीना, साड़ी संभालते रहना, एंड देन वो वाला सीन भी आ जाता था, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट स्माइल, और पता नहीं कौन कौन से ऐसे हमें टाइटल्स दिए गए थे, और मुझे ऐसा याद नहीं है कि मुझे कोई टाइटल मिला था, लेकिन बात वही है कि हम इन सारी चीजों में इतना इन्वॉल्व थे कि कहीं वो दिमाग में थॉट ही नहीं आया कि ये आखिरी टाइम है जब हम इस तरीके से मिल रहे हैं, और उसके बाद आई स्वेयर हम कभी ऐसे नहीं मिले। एंड दिस डे बिकेम वन ऑफ दोज लास्ट डेज जो मुझे याद रह गया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको आपके स्कूल का लास्ट डे याद है, तो मुझे डीएम करके बताइएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ट्वेल्थ बोर्ड का वो लास्ट वाला पेपर वाला दिन जब हम इतने खुश हो रहे थे कि ये एग्जाम्स खत्म, स्कूल खत्म, हम ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहे थे उस मोमेंट में कि सब कुछ तो खत्म, साथ ही साथ ये रोज मिलना, एक दूसरे को देखना, गॉसिप करना, गप्पे मारना, दिल के छाले फोड़ लेना और दिल हल्का कर लेना, ये भी खत्म।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. और वो दिन एक ऐसा दिन है जो आज भी मेरी memories में छपा हुआ है. Because of the reason कि यार वो आखिरी दिन था जब हमारी पूरी क्लास कॉमर्स सेक्शन जो था वो इकट्ठा था. उसके बाद हम कभी एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिले नहीं. कहीं चार दोस्त मिल जाते हैं, कहीं दो दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन पूरी की पूरी क्लास का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल हुआ. रियूनियन में भी सब साथ नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ द रीजन कि सब अलग अलग शहरों में बस गए हैं, किसी की शादियां हो गई हैं, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो सब नहीं आ पाते हैं. लेकिन वो दिन मुझे याद है जब हम खुशी मना रहे थे कि आखिरी पेपर है, आखिरी दिन है स्कूल का, ये मुझे याद है. आज भी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हुए, भीड़ लगाए हुए, सबके सब हो हल्ला करते हुए दिखाई दे रहे मुझे अपनी मेमोरी में आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो. और हमें से काफी सारे लोग जो है अपनी व्हाइट शर्ट्स लेकर गए थे. पहले से डिसाइड कर लिया था हम लोगों ने कि हम अपनी व्हाइट शर्ट्स लेकर आएंगे उस दिन. और मार्कर से सबने उन व्हाइट शर्ट्स के ऊपर मैसेजेस लिखे और लिखवाए एक दूसरे से. एंड दैट्स सच अ क्यूट मोमेंट, आई स्टिल रिमेम्बर. मेरे पास आज भी वो व्हाइट शर्ट रखी हुई है जिसपे मेरे क्लासमेट्स के, मेरे दोस्तों के, सबके मैसेजेस हैं. इनफैक्ट उस व्हाइट शर्ट की उस दिन भी इतनी अहमियत नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मतलब दिस इज लाइक अ ट्रेंड, ये तो करवाते ही करवाते हैं. लेकिन आज उस सिर्फ एक व्हाइट शर्ट जिसकी अहमियत बढ़ गई उन मैसेजेस की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है वो. ढूंढती हूँ कभी कभी तो मैं कि कहीं मिसप्लेस तो नहीं हो गई है और उसको संभाल के रखा हुआ है कि यार ये गायब नहीं होनी चाहिए, भले ही कोई नई शर्ट इधर उधर हो जाए, लेकिन ये पुरानी वाली जिसके ऊपर मार्कर्स से आड़ी तिरछी लाइनों में मेरे दोस्तों ने, मेरे क्लासमेट्स ने मैसेजेस दिए हुए हैं, ये कहीं नहीं जानी चाहिए, वो ज्यादा प्रेशियस हो गई है मेरे लिए. तो सोचो जरा, हम जिस मोमेंट में थे उस मोमेंट में हम कुछ और फील कर रहे थे विदाउट रियलाइजिंग कि ये मोमेंट अब कभी नहीं आएगा. एंड आई थिंक लाइफ का हर एक मोमेंट कुछ इसी तरीके से है. आज भी कुछ ऐसा ही है. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बचपन की यादों में जाते हुए कि आपको क्या ऐसा कोई मोमेंट याद है कि यार वो लास्ट था, उसके बाद तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं. डीएम करिए ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा. आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: देवी और सज्जनों, इस डायलॉग से पता लग जाता है कि आप क्या देख रहे हैं।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, कौन बनेगा करोड़पति इज अ शो जो बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन जब इस शो की शुरुआत हुई तो ये शो ने अमिताभ बच्चन के करियर को पुनर्जन्म दिया था। दिस वॉज द टाइम व्हेन अमिताभ बच्चन वॉज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्रंच और इस शो ने उन्हें फिर एक नई पहचान दी एंड ही बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम अगेन, लेकिन एक नए अवतार में। हालांकि इस शो को शाहरुख खान ने भी होस्ट किया है, लेकिन लुक्स लाइक द ऑडियंस डज नॉट वॉन्ट टू सी एनी वन एल्स अपार्ट फ्रॉम अमिताभ बच्चन।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: देखो यार, अभी लाइट रिमोट से या मोबाइल के ब्लूटूथ से बंद हो सकती है, लेकिन एज अ 90s किड लाइट बंद होती थी इस डायलॉग से, जो लास्ट में आएगा वही लाइट बंद करेगा।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड एज अ 90s किड यही हमारा तरीका होता था यार, किसी भी कमरे की लाइट बंद करने का, कि खुद तो भाग लो और ये ऐलान करते हुए भागो कि जो कमरे में से सबसे लास्ट में निकलेगा ना, वही लाइट पंखे टीवी बंद करके निकलेगा। लेकिन आज तो लाइफ 360 डिग्री टर्न ले चुकी है। आज लाइट बंद करने के लिए कोई ऐलान नहीं करना पड़ता है, या तो रिमोट यूज कर लो या अलेक्सा को बोल दो, लाइफ सॉर्टेड है। किसने सोचा था कि टेक्नोलॉजी यहाँ तक आ जाएगी कि लाइट बंद करने के लिए बंदों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी बात पे अल्लाह के बंदे हंस दे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर एग्जाम वाले रिवीजन,
2: यादों को चिट्ठी।
1: बाप रे बाप, टाइम टेबल आता नहीं था कि तुम्हारी एक लिस्ट बन जाया करती थी कि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब एग्जाम्स पास आते हुए नजर आते थे और तुम हमारे सबसे बड़े साथी बन जाते थे। सुबह जल्दी उठकर तुम्हारे साथ बैठना, वही पुराने चैप्टर्स को दोहराना, टॉपिक पर टॉपिक टिक करना, जैसे हर बार कुछ नया सीख रहे हो जबकि सब कुछ पहले से ही पढ़ा हुआ होता था। तुम्हारे बिना तो जैसे एग्जाम्स की तैयारी ना बिल्कुल अधूरी लगती थी। अगर किसी सब्जेक्ट में मैं तुम्हें नहीं लाती थी ना अपने साथ, यानी कि मैंने अगर उस सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं किया है, तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं एग्जाम कैसे दे रही हूँ। कभी रट्टा मारते वक्त तो मेरा साथ देते थे, तो कभी दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी में तुम्हारे सहारे सब कुछ आसान हो जाता था। तुम्हारी वजह से रिवाइज वंस बिफोर स्लीपिंग जैसी सलाहों पर अमल हो पाता था। और वो लाल और नीले रंग के हाइलाइटर्स, वो भी तो कितने इम्पोर्टेंट वाले टैग्स थे। सब आज भी मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। नहीं नहीं, कोर्स मटेरियल नहीं, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल। उस टाइम पर शायद हम ज्यादा ही शिकायतें करते थे, थक जाते थे, लेकिन आज जब वो दौड़ भाग भरे दिन नहीं है ना, तो तुम और तुम्हारा वो साथ बड़ा याद आता है। अब जिंदगी की किताबें बदल गई हैं, लेकिन सच कहूं तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम ना सिर्फ हमारी नॉलेज को दोहराया करते थे, बल्कि पेशेंस और मेहनत भी सिखाया करते थे। और शायद तुम्हारे साथ बिताए हुए पल की वजह से ना आज हम लाइफ को भी रिवाइज कर पा रहे हैं। तो बेसिकली तुम जो हमारे स्कूल टाइम में थे, वो आज भी हमारी जिंदगी में मौजूद हो। वो अलग बात है कि उस कोर्स मटेरियल के साथ, सीरियस वाले लुक के साथ नहीं हो, लेकिन हो तो सही। तुम्हें याद करती, तुम्हें गुनगुनाती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I did not realize, yaar. शाहरुख खान की चलते चलते विद रानी मुखर्जी वॉज वन ऑफ दोज फिल्म विच वॉज रेयर जहाँ पे हीरो हीरोइन की इतनी जल्दी शादी हो जाती है, एज इन मतलब मूवी चलते चलते शादी हो जाती है, क्योंकि बाकी सारी जगहों पे तो सिर्फ लव स्टोरीज ही दिखाई गई है ना, यहाँ पर मैरिज स्टोरी भी दिखाई गई है।
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And I think ये शायद एक वजह थी कि मुझे चलते चलते उस दौर में इतनी नहीं समझ में आई थी, क्योंकि शादियां किसको समझ में आती थी, रोमांटिक तो हम सब थे, लेकिन शादी मूवी में भी हो जाती थी ना तो हमारा भी रोमांस खत्म हो जाया करता था। बट यू नो इस फिल्म की बिहाइंड द सीन्स में भी काफी सारी चीजें जो हुई और हमको नहीं पता है, तो आज मैं आपको बता ही देती हूँ। यू नो इस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस पता है किस

चुना गया था, मगर उस वक्त उस दौर में सलमान खान और ऐश्वर्या राय वर कपल और इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस थे कि सलमान खान सेट्स पर आया करते थे और कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, जिसकी वजह से शाहरुख और सारी टीम को ये लगा था कि यार दिस इज ओनली गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर ट्रबल्स फॉर अस, एंड इवेंचुअली ऐश्वर्या हैड टू लीव द फिल्म, विच ऑल्सो कॉज्ड फ्रिक्शन बिटवीन ऐश्वर्या एंड शाहरुख खान। और मुझे आज भी याद है कि एक्चुअली तब बॉलीवुड के गॉसिप कॉलम्स में ये खबरें ना खूब आ रही थी कि सलमान खान एक मूवी के सेट पर गए और वहां पर ऐश्वर्या से उन्होंने लड़ाई करी एंड शाहरुख खान वॉज ऑल्सो देयर एंड शाहरुख खान बीच में एंड वॉट नॉट, ये सारी की सारी गॉसिप्स थी उस टाइम पर। आज जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ा तो यस, कनेक्टिंग द डॉट्स, इट वॉज समवेयर ट्रू। एंड लेटर ऑन शाहरुख खान ने इस बात के लिए अपना रिग्रेट भी एक्सप्रेस किया कि ये जो चेंज उनको करना पड़ा था ना कि ऐश्वर्या को ना लेकर एक दूसरी एक्ट्रेस के लिए तलाश शुरू करें इस फिल्म के लिए, वहां पर उनको बुरा तो लगा ही था। बट ऑल सेड एंड डन, इवेंचुअली द फिल्म वाज डन बाय रानी मुखर्जी। लेकिन जब रानी मुखर्जी स्टेप्ड इनटू द रोल, तब फिर से रानी और ऐश्वर्या के बीच में क्लैश आ गया। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: जब चलते चलते ऐश्वर्या को छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस जो उनके और सलमान खान के रिलेशनशिप में आ रहे थे उस वक्त, तो फिर ये फिल्म कई सारी एक्ट्रेसेस को दी गई थी, लेकिन सम चोज नॉट टू डू द फिल्म जस्ट सो दैट वो लोग ऐश्वर्या के साथ अपने रिलेशनशिप सही रख पाए।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And you know, बड़ी मजाकिया चीज ये हुई कि अमीषा को भी ये फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन लेटर ऑन इन एन इंटरव्यू अमीषा पटेल ने इस बात को जाहिर किया कि उन्हें काफी टाइम तक ये नहीं पता था कि चलते चलते कभी उन्हें ऑफर की गई थी। हो सकता है वो हाँ कर देती इस फिल्म के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनके जो सेक्रेटरी है उन तक ये बात पहुंची थी और उन्होंने इस बात को अमीषा को बताया ही नहीं कि चलते चलते आपके बैग में आ गई है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि अमीषा वॉज वेरी बिजी इन दोज डेज। तो या दैट was the reason that she could not do chalte chalte, and then uske baad ye film was also offered to Kajol, lekin Kajol decided to not do the film because of the reason ki she knew ki Aishwarya was doing this film and there is a certain reason jiski wajah se unko ye film chhodni padi hai, aur isse unke aur Aishwarya ke relationship pe kahin na kahin impact aayega, to she stepped back। मगर रानी मुखर्जी कुछ ब्रेव निकली। रानी मुखर्जी एंड ऐश्वर्या राय वो बेस्ट फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री एट दैट टाइम, एंड शी सेड यस टू चलते चलते, प्रोबेबली विद द कॉन्फिडेंस कि यार हम इतने अच्छे दोस्त हैं और इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि दिस इज प्रोफेशन एंड लेट्स नॉट टेक इट पर्सनली। लेकिन शायद ऐश्वर्या राय ने इसको पर्सनली ले लिया, सो मच सो दैट कि आज भी कहीं रानी मुखर्जी एंड ऐश्वर्या राय डोंट सी ईच अदर। इनफैक्ट हमने उनको इन पब्लिक भी कहीं भी एक दूसरे के साथ स्टेप इन करते हुए, स्टेप आउट करते हुए नहीं देखा है। सो या ये जो बहुत अच्छी दोस्ती थी आशुमा और रानी मुखर्जी, क्योंकि रानी मुखर्जी ऐश्वर्या राय को प्यार से आशुमा ही बोला करती थी, वो टूट गई सैडली सैडली। आप एक बात बताओ, अगर आप रानी मुखर्जी या ऐश्वर्या राय की जगह होते तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते? DM कर सकते हो मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए अगला गाना आ रहा है एंड यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। बड़ी लंबी चौड़ी पोएम बन गई यार, बहुत मीटर में बिठा लिया मैंने राइमिंग को। स्टे ट्यून्ड।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कैसेट के साइड बी का दूसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: मिशन कश्मीर का ये गाना जब आया था तो हमें इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन गाना इतना अच्छा लगता था कि बस बाय हार्ट याद कर ली थी इसकी लिरिक्स हमने। Interestingly, this song is actually a Kashmiri folk song, जो एक भवरे यानी कि बुमरो और फूलों के बीच जो रोमांस चलता है ना, उसके बारे में बात करता है। शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और जसपिंदर नरूला की आवाज में दिस गाना sets a vibrant mood। और सिर्फ आवाज ही खूबसूरत नहीं थी, प्रीति भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी इन द ट्रेडिशनल कश्मीरी अटायर, और ऋतिक रोशन इन द पठानी सूट। ओए होए होए होए, बस लड़कों को पठानी सूट में देखना इज वन कमजोरी हम लड़कियों की, नहीं क्या? एनीवेज, इस टॉपिक पर कभी और बात करेंगे, अभी के लिए तो इस गाने को आपकी प्लेलिस्ट के लिए सजेस्ट करते हुए नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि है मिर्ची सारा। मैं आपसे मिलूंगी सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फ्राइडे नाइट यानी बड़ी सारी हिंदी मूवीज रिलीज होती हैं आज। कई बार तो ऐसा होता है बेबी कि मूवी हॉल्स में ना फिल्म्स रिलीज नहीं हो रही, लेकिन ओटीटी पे थर्सडे नाइट या फ्राइडे नाइट को रिलीज होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब एवरी फ्राइडे बड़े हॉल्स पे कोई ना कोई बड़े स्टार की फिल्में रिलीज होती थी। फ्राइडे के लिए हमेशा हमारे जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो ना काफी नर्वस रहते थे कि उनकी फिल्में चलेंगी कि नहीं चलेंगी। ऐसे में ना बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ना कुछ कुछ सुपरस्टिशंस फॉलो करते थे, नॉट जस्ट फॉर फ्राइडेज बट ऐसे भी अपनी लाइफ में। अब जैसे कि मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे स्टार के बारे में जिन्होंने नॉनवेज और लिकर दोनों को छोड़ दिया था बिफोर द रिलीज ऑफ हिज बिग बजट फिल्म। कौन थे वो फिनोमिनल डायरेक्टर एंड एक्टर, अभी बताएगी आपको श्रेया। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मेरा नाम जोकर ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी राज कपूर साहब को। ये उनके दिल के सबसे करीब फिल्म थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पे दर्शकों के करीब नहीं पहुंच पाई। दिस वाज अ सुपर फ्लॉप फिल्म और इस फिल्म में बहुत सारा पैसा लगा था राज कपूर साहब का। इनफैक्ट वो एकदम बैंकक्रप्ट हो गए थे जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिरी। उसके बाद उन्होंने जिस फिल्म के लिए अगला काम शुरू किया ना, उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया था उस फिल्म के रिलीज तक। वो क्या सैक्रिफाइस था, कौन सी फिल्म थी, आई विल लेट यू नो कुछ गानों के उस पार। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची के साथ।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी का नाम बॉबी, और ये एक ऐसी फिल्म होने वाली थी जिससे शायद राज कपूर साहब अपनी सारी बैंकरप्सी को रिकवर कर पाते, अपने डेट्स को रीपे कर पाते। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज ना मैं कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ ऑफ आर हिंदी एक्टर्स, डायरेक्टर्स, लेजेंडरी स्टार्स। सो जब राज कपूर साहब की बहुत सारा पैसा लगने के बाद, इनफैक्ट उनका सारा पैसा लगने के बाद, मेरा नाम जोकर सुपर डुपर फ्लॉप हो गई ना, तो उन्होंने बॉबी फिल्म बनाई। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिर से कर्जा लिया था बहुत सारे नोन और अननोन रिसोर्सेस से। उनकी ये इकलौती उम्मीद थी अगर उनकी ये फिल्म चल गई तो वो अपने सारे कर्जे को वापस रीपे कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने पता है एक सैक्रिफाइस किया था, एक नहीं बल्कि दो सैक्रिफाइसेस किए थे। उन्होंने नॉनवेज को और लिकर को, ड्रिंक्स को तब तक हाथ नहीं लगाया था जब तक बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन की रिलीज पे ही बॉबी को सुपर हिट नहीं कह दिया गया, एंड आफ्टर दैट ही पार्टीड। तो इसी बात पे बॉबी का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावते।
2: Yes!

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें और आज उस जमाने के सुपरस्टिशंस भी चल रहे पुरानी जीन्स पे। मैं हूँ श्रेया एंड मैं कुछ बॉलीवुड स्टार्स के ना सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ, कुछ टोटकों की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर रही हूँ जिसपे वो बिलीव करते हैं। अब अगर हम द सुपरस्टार बच्चन साहब को लें तो ये सबको पता चल गया है ना अब तो कि अमिताभ बच्चन इंडिया का कोई भी क्रिकेट मैच लाइव नहीं देखते। उनको ये लगता है कि जब जब वो लाइव देखते हैं ना इंडिया हार जाती है, और अगर कहीं बैटिंग कर रही होती है तो बहुत जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं ना वो सबको रिकॉर्डिंग मोड पे लगा करके छोड़ देते हैं एंड आफ्टर द मैच ही वॉचेस देम। लेकिन ये वाला सुपरस्टिशन उनका सबको पता है, एक जो सिर्फ मुझे पता है मैं अभी आपको बताऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया बैक टू बैक चल रही है। आज मैं सुपरस्टिशंस ऑफ हमारे लेजेंडरी बॉलीवुड स्टार्स की बात कर रही हूँ। बच्चन साहब का क्रिकेट को लेकर के क्या सुपरस्टिशन है ये तो सबको पता है कि वो कोई भी इंडिया का मैच जो है ना क्रिकेट का, वो लाइव नहीं देखते, वो हमेशा रिकॉर्डिंग मोड पे डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं, बिकॉज ही फील्स कि अगर वो लाइव विटनेस करेंगे तो इंडिया हार जाती है। एनीवे, दूसरा सुपरस्टिशन जो उन्होंने बातों ही बातों में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पंक्चुअल बहुत है अपनी मूवी की शूटिंग को लेकर के, किसी भी सेट पे पहुंचने को लेकर के। ही सेड कि मैं इतना ज्यादा पंक्चुअल हूँ कि अगर मैं कभी लेट हो जाता हूँ, खुदा ना खास्ता, जो वो कभी नहीं होते हैं, तो उनके दिल में एक खटास सी हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं इस सेट पे लेट क्यों पहुंचा। क्या आज का दिन उनके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा? इमेजिन, उनका ना समय पे कंट्रोल है जो किसी का नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई ही इज द बच्चन। इसी बात पे बच्चन साहब का एक गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: Country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me please,
0: my name is Anthony Gonsalves.
2: How cute!
0: Right.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जीतू जी आज भी प्लेन में चढ़ने से डरते हैं और इसीलिए वो थोड़ी पूजा पाठ करके ही किसी भी प्लेन को बोर्ड करते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ द जंपिंग जैक उनको कहा जाता था बिकॉज ही डांस सो वेल। सो जितेंद्र जी का ये सुपरस्टिशन है कि कोई भी फ्लाइट वो बोर्ड कर ले उनको थोड़ी सी पूजा करनी होती है। एंड ही सेज कि उनको फ्लाइट फोबिया है क्योंकि इनिशियल डेज में उन्होंने जब जब फ्लाइट ली तो उसमें टर्बुलेंस रहा, फ्लाइट थोड़ा डगमगाई, ऑल ऑफ इट, उससे उनके दिल में डर घर कर गया और इसीलिए वो फ्लाइट में चढ़ने से पहले ऊपर वाले को बहुत अच्छे से याद करते हैं और उन्हें बटर लगाते हैं। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, जीतू जी की बात हुई है, उनका गाना ना हो ये गुस्ताखी मैं कैसे कर सकती हूँ। सो कमिंग योर वे इज अ सॉन्ग और उसके बाद मैं यहीं बैठी हूँ, मिलते हैं कुछ गानों के उस पर।

आप सुन रहे हैं पुरानी जींस श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: Energy. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सुभाष घई की फिल्म थी ये राम लखन, और सुभाष घई का सुपरस्टिशन शेयर करूं मैं पुरानी जींस पे, आप हो श्रेया के साथ। सुभाष घई का ये सुपरस्टिशन तो हम उनकी हर फिल्म में देख, इनफैक्ट जो फिल्में उन्होंने 2000s में बनाई उसमें भी देख चुके हैं, फिर चाहे वो परदेश हो या फिर तालो। तो सुभाष घई को हमेशा लगता है कि वो जब भी कोई फिल्म बनाते हैं उसमें उनका स्पेशल अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है, और जिस भी फिल्म में वो खुद आते हैं वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। मुझे याद है कि इस फिल्म राम लखन में भी उनका एक स्पेशल अपीयरेंस होता है छोटा सा, यादें में इनका स्पेशल अपीयरेंस होता है, ताल में, परदेश में, इन सब में आप सुभाष घई को देख सकते हो। वैसे आज कुछ ऐसे ही टोटकों की बात हो रही है, कुछ ऐसे ही सुपरस्टिशंस की बात हो रही है जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स मानते आए। कम राइट बैक, विल शेयर मोर विद यू। मैं हूँ श्रेया, यू कैन कैच मी ऑन फेसबुक और इंस्टा, हैंडल है मेरा आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव।

चिघला लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नासिर हुसैन साहब ने अपने फेवरेटिज्म को छिपाने के लिए ये बात कही हो या फिर अपनी पर्सनल केमिस्ट्री को, विद आशा पारेख, लेकिन वो हर बार ये कहते थे कि आशा पारेख उनके लिए बहुत ही लकी हैं एंड दैट इज व्हाई वो उनको अपनी फिल्मों में रिपीट करते थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज ना मैं कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ हमारे बॉलीवुड स्टार्स की। सो कैमरे के पीछे डायरेक्टर नासिर हुसैन, कैमरे के उस पार आशा पारेख, और इस जोड़ी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी जिनमें से तीन तो थी जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल एंड ऑफ कोर्स मोर ऑफ देम। लोग तो ये भी कहते हैं कि नासिर हुसैन और आशा पारेख के बीच में ना लव एंगल था। आशा पारेख ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी डायरेक्टर साहब से बात हुई उन्होंने इसको सुपरस्टिशन का एंगल दिया, आशा पारेख को अपनी फिल्मों के लिए लकी माना। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, तो इसी बात पे तीसरी मंजिल का गाना हो जाए, डायरेक्टेड बाय नासिर हुसैन एंड हीरोइन बीइंग ऑफ कोर्स आशा पारेख। अप नेक्स्ट फॉर यू

0: Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना।

इनकी फिल्मों में ज्यादा काम तो नहीं मिलता था, लेकिन हाँ इनकी जोड़ी इतनी हिट थी कि काका हमेशा इन्हीं का नाम रेकमेंड करते थे, और इसीलिए 9 फिल्में इन्होंने एक साथ करी विच वॉज सुपर डुपर हिट। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ आज ना मैं सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ, हमारे बॉलीवुड स्टार्स के कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस जो उन्होंने एकदम शिद्दत से फॉलो किए। अगर काका की बात लें यानी राजेश खन्ना जी की बात लेना, तो उनके लिए मुमताज जी बहुत लकी थी, ऐसा राजेश खन्ना ने इंटरव्यूज में भी कहा, क्योंकि उनकी जोड़ी को बहुत एक्सेप्टेंस मिली, उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत लाइक किया। एंड मुमताज जी उनके साथ काम करने से पहले ना बी ग्रेड फिल्मों में काम करती थी, लेकिन काका और उनकी जोड़ी ए ग्रेड थी। तो राजेश खन्ना मुमताज को अपनी हर फिल्म के लिए बहुत लकी मानते थे, और इसीलिए डायरेक्टर्स को उन्हीं का नाम सजेस्ट करते थे। आपकी कसम हो, दो रास्ते हो, अपना देश हो, प्रेम कहानी हो, सो मेनी ऑफ देम, पूरी 9

0: फिल्में।
1: तो इन्हीं दोनों की केमिस्ट्री का एक बहुत ही स्वीट सेंशस गाना मुझे बड़ा पसंद है, जिसमें थोड़ा नटखट हो रही है मुमताज जी एज ऑलवेज। उन्हें प्यार से बाय द वे काका मोटी कहा करते थे। और राजेश खन्ना ऐसे दिखा रहे हैं उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उनकी हीरोइन की बिंदिया चमकेगी या चूड़ी खनकेगी। पुरानी जीन्स पे, दिस इज मी श्रेया, यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

इस फिल्म में लीड हीरो तो ऋषि कपूर थे और उनके साथ सपोर्टिंग एक्टर का रोल कर रहे थे राकेश रोशन। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ। राकेश रोशन साहब का सुपरस्टिशन तो हम सबको पता है, जब उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की तो सब फिल्में के से शुरू होनी थी, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई एज अ फिल्म मेकर 1987 की खुदगर्ज वो सुपरहिट फिल्म बनी। फिर उसके बाद उन्होंने बनाई के से ही खून भरी मांग, फिर उनको के का ना एकदम चस्का चढ़ गया। ही बिकेम लाइक अब भाई मेरी जितनी फिल्में क से शुरू होंगी। फिर उन्होंने बनाई किशन कन्हैया, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया के सीक्वल, क्रिश बनाए, क्रिश के सीक्वल, ऑल ऑफ दैट। अब अगर कुछ करने से आपका आपकी चीजें अच्छी हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सुपरस्टिशन तो आ ही जाता है ना उस चीज को लेकर के। राकेश रोशन साहब के साथ भी यही हुआ, किरण नहीं कई। पुरानी जींस में आप श्रेया के साथ जो आज कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हो फॉर बॉलीवुड स्टार्स। अगले कौन होंगे बताऊंगी, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची के साथ।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब ने ना लता जी को इस बात के लिए बहुत ब्लेम किया क्योंकि वो लता जी को अपनी फिल्मों के लिए लकी मानते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरस्टिशंस ऑफ आवर बॉलीवुड स्टार्स टुडे। एंड राज कपूर जो थे ना, उनकी हर फिल्म में लता जी का गाना होता था। इनफैक्ट सिर्फ लता जी ही गाती थी अगर फीमेल गाना है तो। लेकिन एक फिल्म जिससे ये प्रथा को रोका गया वॉज मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में लता जी की आवाज नहीं थी और जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एकदम धड़ाम गिरी, फ्लॉप हुई, तो राज कपूर ने एक्चुअली में लता जी को भी ब्लेम किया कि दीदी तुमने इस फिल्म में गाना नहीं गाया था मेरे लिए, इसीलिए ये अनलकी रही। पुरानी जीन्स पे राज कपूर साहब की फिल्म जिसके लिए लता जी ने गाना गाया, वैसे तो बहुत सारे पर ये वाला मैं स्पेशली लेकर के आई हूँ। सुनिए और वापस आइए श्रेया के साथ।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है आंखों ही आंखों में।

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हेट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mm-hmm.

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।